भैया और उन्होंने डगे या तगे गामे जे तुंगा नते सो डगे से कि तुंगा मम्मे जा जाते ना गामा गेरे तो मान्यो रुपियो इनको नीचे तागे के नगा गोन्यो कि तुंगा ने ने कि कुरे मासी नगा कि गाजे 16000 ने हमें जे चुरवा कि ने जी ने मीते ने के ने गसे लेते ने 16000 को तारे ते नाम ऐसा से 16000 और ने जी तागे को नगा को इनके नि कि कुरे गाम कि कुरे इन इस सही या का कि गाजे के 16000 स्टेटस 74 आश नंबर 4 का सने ने काते सुन देगे शंगमु तुम कोई तक देगे शक्ति तुम क्या कर रहे हो तक मामे जैसे क्या कर चीन सांग नमसी में वाके चल स्टेटस 74 आश वे गोइंग टू गेट नंबर अंगवन किला मुतु इनके नंबर 4 कोई देगा ताने में बाकी ए को मगाते न्योरु कंगे देगे शंगमु तो हमें जेगिल के जगह तुल के गुण रबिने जो तक क्यों की तुम स्टेटस 74 आश स्टेटस 74 आश लबा तो गोइंग टू गेट नंबर अंगवन